एक शब्द हुण मैं तुहाडे सामने पेश कर लां, बहुमुल्ला शब्द है। इस शब्द की कोई कीमत नहीं दिती जा सकती। गुरु साहब सानू इस शब्द च हुण यह समझाण लगे हन, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एक साज जो हन वो सानू इंट्रोड्यूस करन लगे हन। उन्होंने पता है हर बंदा ना सितार सीख सकता है, हर बंदा ना तबला सीख सकता है, हर बंदा ना राग सीख सकता, बड़ी मुश्किल गल है राग सीखना, हर बंदा ना हारमोनियम सीख सकता है, हर बंदे नु कीर्तन करना नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस शब्द नु पढ़ के दंग होया, हैरान होया, आनंद आया कि गुरु महाराज ने कहा यह साज नहीं भी आंदे तो कोई गल नहीं, असल साज ही और हैं, वो आने चाहिए हैं। प्यार नाल सुनो शब्द, कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज का यह महान रब्बी कलाम है, कहते हैं वाजा मत, जो अच्छी मत है ना वही असल वाजा है। इंटलैक्ट इज द रियल इंस्ट्रूमेंट, इंटलैक्ट विजडम, कहते हैं जो मत है ना सो जी अकल, यो असल वाजा है, ये वाजा होना चाहिए, बारला वाजा ना भी हो। अगली गल पखावज भाव, पखावज कहते हैं तबले, कहते हैं वाहिगुरु का भाव ही असल तबला है, जिस दे कोल ए वाजा ते तबला आ गया कहते हैं होए आनंद सदा मन चाओ, उस इंसान की जिंदगी हमेशा आनंद रहेगा तो चा खिड़ा बनिया रहेगा। तो सात संगत ए वाजे ते बार बार ही रह जाते हैं, अंदर ते पहुंचते नहीं हैं, कई दफा इन्हों बजाण वाले टोटली नॉन म्यूजिकल रह जाते हैं कई दफा। लेकिन गुरु साहब कहते हैं मत का वाजा और वाहगुरु के प्रेम का जो तबला है ये तुहाडे पास है, ते असल संगीत तुहाडे पास है। कहते हैं अगे एहा भगत एहो तपताओ, एहो असल भक्ति है, एहो असल तप है कि गुरु दी मत दा वाजा अते वाहिगुरु दे भाव दा प्रेम दा जो है वो तबला तुहाडे पास होवे, जिस दे पास ए साज हन ना अंदर ले, क्योंकि मत भी अंदर है ते भाव भी अंदर है, जिस दे पास ए वाजा ते तबला है असल साज ते उस दे कोल हन, असल संगीतकार म्यूजिशियन ओ है। अगली गल कहते हैं इत रंग नाचो रख रख पाओ, जिंदगी दे रस्ते होते इस रंग दे विच वाहिगुरु दी मत अते वाहिगुरु दे पाओ दे विच कहते हैं पैर रख रख के नचदे हुए जीवन दे उते चले। अगली गल कहते हैं पूरे ताल जाने साला, पूरे ताल दा मतलब के ताल दी समझ, रिदम दी समझ, प्रकशन दी समझ, कहते हैं असल रिदमिक, असल तबला प्लेयर, असल ड्रमर ते ओ इंसान है जेड़ा वाहिगुरु दी सिफत ला जानदा है। पूरे ताल असल ते तार ओ ताल ओ पूर सकदा है जिसनू वाहिगुरु की सिफत सलाह आंदी है, होर नचना खुशिया मनमा, बाकी बारला सारा नचना टपना जो संगीत है ये तो कहते हैं एक मन की गल है, मन दे तल ते है, इस तो अगे नहीं। अगे कहते हैं सत संतोख वजे दोए ताल, इथे ताल का अर्थ है छैणे। गुरु महाराज कहते हैं जिस इंसान दे पास सत है, सत का अर्थ है परोपकारी सुभाव, सेवा करनी, केयरिंग एंड शेयरिंग। गुरु साहब कहते पास जिस दे पास केयरिंग एंड शेयरिंग एंड कॉन्टेंटमेंट, सत संतोख कहते हैं उस दी जिंदगी दे विच दो छैणे वज रहे हैं। सत संतोख वजे दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, वाजा का अर्थ है पैरां दे विच जिहड़ियां झांझां घुंघरू। कहते हैं वाहिगुरु नूं निहारना उस दे दर्शन करने कुदरत दे विचों ही असल पैरां दे विच झांझां हैं, यानी ये अंदरले साज उन्होंने सानू दिते हैं। अगे कहते हैं राग नाद नहीं दूजा भाव, रब तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना हिरदे दे विच ही असल राग है। जिस बंदे दे अंदर ते नफरत है, ड्यूअलिटी है, लेकिन वह कहता मैनू राग बड़े आंदे हैं, बाबा जी कहते कोई राग रोग नहीं आता, असल राग ते ए है कि वाहिगुरु तो अलावा होर को अंदर प्यार ना होवे, ए है असल राग। राग नाद नहीं दूजा पाओ, ए तरंग नाचो रख रख पाओ, इस रंग दे विच जिंदगी नू जो है रंगो अते जिंदगी दे रस्ते दे उते जीवन दे मार्ग दे उते बाबा जी कहंदे हन नचदे होए चलो, कुददे होए चलो। अगली पंक्ति पाओ फेरी होवे मन चीर, जो डांस करते हैं वह फेरियां लेंदे हैं, सर्कलिंग करते हैं। गुरु साहब कहंदे हन मेक यूर माइंड सर्कल अराउंड वाहिगुरु, अपने मन नूं वाहिगुरु दे आले दुआले पहुंचतियां दिओ। कहिंदे नें भाव फेरी, वाहिगुरु दा भाव ही असल फेरी होवे, नाच दी डांस दी होवे मन चीत, बहिंदिआं उठदिआं नीता नीत। वे कहिंदे हन तुसीं देखिआ होवेगा कथक डांस दे विच कई दफा कि जो नृत्यकारी करदे हन, जो डांसर हुंदे हन, ओह कदे घुमाटणियां लैंदे हन, कई किस्म दीआं मूवमेंट्स करदे हन, कई दफा ओह अचानक जमीन उत्ते लेट जांदे हन। बाबा जी कहिंदे हन लेटण लेट जाणे तन स्वा, ए समझ नूं समझना कि एक दिन इस तन ने हमेशा लई सुआह होके लेट जाना है, असल लेटना है, बाहरले इस लेटन नूं छड्डो, यानी जिसने ए लेटना नहीं सिखिया बाहरला लेटना जो डांस दा वो व्यर्थ है, बेकार है।
लेटन लेट जाने तन सुहा इत रंग नाचो रख रख पाओ। अखीरलियां पंक्तियां बाबा जी कहने सिख सभा दिखिया का भाव। आ बहुत समझण वाली गल है। कहते हैं सिखां दी सभा सिर्फ ओयो हुंदी है जिथे दिखिया का भाव होवे। दिखिया कहते हैं गुरु के उपदेश नूं, भाव कहते हैं इंटरेस्ट नूं, प्यार नूं। कहते जिथे सिख गुरु की दिखिया गुरु का उपदेश सुनने के प्यार दे नाल जुड़े हैं ओयो असल सभा है। अदरवाइज कोई सभा नहीं, बाकी क्राउड होंगे। सिख सभा दिखिया का भाव, जिथे सिख दिखिया दे वास्ते, दीक्षित होने दे वास्ते, सिखण दे वास्ते, एजुकेशन लेने दे वास्ते, ग्रो होने दे वास्ते, डिवेलपमेंट दे वास्ते इकट्ठे होंदे हन, कहंदे हन ओयो असल सभा है। सिख सभा दिखिया का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाम, गुरमुख दे अंदर ए शौक होवे सच्चे नाम नूं सुनन दा। अखीर च कहंदे हन नानक आखण वेरा वेर, वाहिगुरु दा नाम हिरदे च हमेशा वार वार वार वार ले जाना। कहंदे हन इत रंग नाचो रख रख पैर। ऐ जग्यासुओ, ऐ गुरसिखो, जीवन नूं इक डांस बना लो अते सारी जिंदगी जो है वो जिंदगी दे मार्ग उते डांस करते चलो, डांस करते चलो। कोई गल नहीं जे तुहानूं बाहर लावाजा नहीं बजाना आता, कोई गल नहीं अगर तुहानूं बाहर तबला बजाना नहीं आता, कोई गल नहीं अगर बाहर तुसीं घुंगरू अते पैरां झांझणा पा के जो डांस नहीं कर सकते। बाबा जी ने अज दे इस शब्द दे विच जो असीं सुनिया है, होर किस्म दे साज सानूं जो हन इंट्रोड्यूस कीते हन, होर किस्म दे साज सानूं बख्शे हन। कहिंदे हन अगर इह साज तुसीं जीवन च लायाओ ते तुहाडा जीवन संगीत बन जाएगा, तुहाडा जीवन एक नृत्यकारी बन जाएगा। मैं फिर दोहरा दिया, मत दा वाजा, वाहिगुरु दे पाओ दा तबला अते सिफत सलाह दे घुंगरू। हजूर कहंदे हन सत संतोख दे ताल अते पैरां दियां जो झांझरां हन वाहिगुरु नूं निहारना है जी। अगली गल कहंदे हन वाहिगुरु तों अलावा होर कोई प्यार ना रखना ही असल राग है। इस रंग दे विच नचो ते डांस भी उन्हें दस्या है कि वाहिगुरु दे सिमरन दे आले दुआले मन नूं घुमाउणा ही असल फेरी है। तन नूं इह जानना कि एक दिन इसने सवां हो जाना ही असल लेटना है। तो इस रंग दे विच अपने जीवन नूं रंगो, जिंदगी नूं इस तरह संगीतक बनाओ, जिंदगी नूं इस तरह एक नृत्यकारी दे नाल करो। तो इन्हां शब्दां नूं असीं सुणीए। बाबा जी ने अंदरले साज दसे हन, अंदरला नाच दसिया है, अंदरली नृत्यकारी दसी है। अते जे किसी दे जीवन च ए नहीं साज हन, ओ बाहर जिन्ने मर्जी साज बजाई जाए ना ओ सजिंदा है ते ना ही ओ कीर्तनीय है। क्योंकि गुरु महाराज ने कीर्तनिया दे वास्ते भी एक गल कही है, वह भी मैं तुहानूं सुनानी चाहना हाँ। कहंदे हन हजूर कहंदे हन पलो पलो रे कीर्तनिया। असल कीर्तनिया ते ओ भला है, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुनगाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। जेड़ा माया दे ना झूठे तंदियां नूं छोड़ दे, जिस दी विरती दे विचों, माया दी सत्संग जरूरत सारिआं नूं, कीर्तनिए नूं भी जरूरत है, उसने भी खाना है, उसने भी जीना है। लेकिन अगर उस दी विरती सिर्फ माया दे वास्ते कीर्तन करदी है, कीर्तन दा उसदे अंदर कोई इश्क नहीं है, बाणी उसके जीवन का आधार नहीं है, तो हजूर कहते हैं ना कीर्तनिया नहीं है। पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुनगाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। अगे चल के कहते हैं कि असल कीर्तनिया ते ओ हुंदा है, पंच बचित्र करे संतोखा, पंच बचित्र करे संतोखा, सात सुरा ले चाले। कहते हैं पंज जो बाजे हैं, काम क्रोध लो मोहंकार, पंच बचित्र करे संतोखा, पंज किस्म दे जो धार्मिक गुण हन, सत संतोख दया धर्म धीरज, इन्हां नूं अपने बाजे बनाए। संतोखा सात सुरा लै चाले, बाजा मान तान। कहंदे हन मान नूं तजना ही उसका असल बाजा होवे। ताना पाओ ना बीगा काले, बुरे पासे रस्ते उते ना रखना पैर ही कीर्तनिए दियां असल ताना होण। तो ऐसा उपदेश महाराज ने सानू बख्शिया है। तो आओ अज दे इस कीर्तन दे विचों अपने जीवन दे विच इन्हां साजां नूं असीं अंदर लैके आईए। गुरु साहब ने कहा ओंकार एक है धुन, एक धुन एक है, ओंकार एक धुन एक है, एक है राग अलापे। कीर्तनिया ते कहंदे ओ हन जो उस एक ओंकार दी हमेशा धुन दे विच रहे ते उस वाहिगुरु दा हमेशा अलाप अलापदा रहे। एकता देसी, हमेशा एक वाहिगुरु दे देश दे विच रहना उसका सुभाव होवे। एक दिखावे सारी दुनिया नूं भी कीर्तनिया वाहिगुरु, एक दे दर्शन कराने की कोशिश करे। एको रहे आ व्यापे,
एकता सुरत एकता ही सेवा उस कीर्तने दी एक ही वाहेगुरु दे प्रेम दी सुरत बनी रहे उस एक दी ही आराधना करदा रहे एको गुरु ते जापे ते ओ कीर्तनिया आप ही गुरु तो उस एक दा जाप करना सिखे कहिंदे न ओ कीर्तनिया हुंदा है ओ असल साजंदा हुंदा है ते ओ साज सानू सारयां नू महाराज ने अंदरले बख्शे हन असीं इन्हां अंदरले साजां नू सिख जाइए तो असीं सारे संगीतकार बन जावांगे असीं सारे नृत्यकार बन जावांगे अते असीं सारे कीर्तनिया बन जावांगे साडी जिंदगी संगीत अते नृत्यकारी दे नाल भरपूर हो जाएगी। आओ प्यार दे नाल इस पंक्ति नू इक दफा गायन करके समाप्त

कई जेवा एक पार ना ले ही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं

शिवा का मतलब शिव जी नहीं है। शिव शिव करते जो नारे आवे बल चढ़े डरू टमकावे बल की जून च पैंदा मां माई की पूजा करे नरसे नार होए उतरे ओ नार की जून च पैंदा। तू कही आद तो आनी मुक्की बरिया का छपानी इस वास्ते हिंदू अन्ना तुरकू काना दोवा ते ज्ञानी सियाणा जेड़ा एक तो बिना दूजे नूं मनदा ही नहीं। शिवा का मतलब शिव जी नहीं, शिवा का मतलब पावन मेनू वर दो पावन शिवा मेले शुभ शुभ वर मेनू बख्शो केड़ा शुभ कर्म।

0: मैं तू हो तुम ते कश चाहे तू हो के तुम्हें सोई की जाए और न मांगत हो तुम ते कश चाहे तू हो के तुम्हें सोई की जाए
1: शत्रन सो अट हीरन की जाए तुझ मरो तो साथ
0: की जाए
1: संत सहाय सदा जग में
0: के पागर जाने
1: पर मोहे देश वा पर मोहे है सब सरमन के कब हम न करो देश वा पर मोहे है सब सरमन से कब हम न करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखों अपने ही मन को लाल जहांगों का उजड़ा और सिखों अपने ही मन को लाल जहां

0: हाथ खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां दा खिलाड़ी, शस्त्रां दा तनी, हाथ खिलौना।
1: मेरा नाम बबिंद सिंह, हाथ खिलौना सोडी राम।

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो सभी को, मौके में मन दे तन दे सिर ला धन है सभी के लिए। जब्द जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदान करे, आज आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

अपसो जो जाने नीचा सौ बनिए सबते ऊंचा। अपने आप नू जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे वाहगुरु वालों उन्हों दात किन्नी मिलती है एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे दाना होए अनार दा। अनार दा दाना अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता लिया के मिट्टी च रोल लिया इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया। वाहगुरु ने उसनू दात बख्शी भाग लाए भाई गुरदास साहब की बाणी दाना होए अनार दा होए धूड़ धूड़ी विच तसे फिर होए बिरख हरियावला हरियावला बिरख बन गया लाल गुलाला फुल विगसे एक बिरख सैस फल फुल फल दे मन अंदर वसे एक दू दाने लख होए एक दू दाने लख होए फुल फल एक दू एक सरसे ज्यो ज्यो लइण तोड़ फल त्यो त्यो फिर फलिए हसे निब चलन गुरु मार्ग दसे निब चलन गुरु मार्ग दसे होए वड़ेवा जग विच वड़ेवे दा बीज उसका प्रमाण देंदे होए भाई गुरदास कहंदे होए वड़ेवा जग विच तनखे नाल रलाया वड़ेवें दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया की होया होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया बूटी हो कपाह दी बूटी बन गया टींडे हस हस आप खिड़ाया। इथे ही बस नहीं अगे इम्तिहान होर पै गया दो मिल वेलन वेलिया वेलने विच भी वेलिया गया वड़ेवा दो मिल वेलन वेलिया लू लू कर तुंब तंबाया तिंजन पिंज उड़ाया कर कर गोरी सूत कटाया तन तन खुंब चढ़ा के दे दे दुख तुआए रंगाया फिर कैंची कट्टन कट्टिया फिर सूई धागे जोड़ सवाया लज्जन कज्जन होए कजाया। ए रुमाल बन के गुरु ग्रंथ साहब जी दे सुभायमान हो देखो किड्डा वड्डा भाग गुरसिख दे सीस ते दस्तार बन के सज गया क्यों इस तरह बाबा दीप सिंह ने अपने आप नू साध सिंह जी एने निम्रता विच लै गए कहिंदे पुरजा पुरजा कद मरे कद हुन छाके जाता प्रेम खेलन का दिल धर तली गली मार्ग पैर धरी जे फिर दीजे कान ना

खड़ग तुपक तबर अर तीर शैव सरोही सैथी ये है हमारे तीर। तीर तू ही सैथी तू ही, तीर तू ही सैथी तू ही।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुम वह करोगे तो तुम अपने ट्रू सेल्फ के नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गैट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावे करते जावे उस दे विच होर भी चीजा हैं जो अगले कीर्तन च विचारियां जानगियां उतना असं अपने ट्रू सेल्फ के नजदीक पहुंचते जावे उतने ही शांत होंगे जावे उतने ही ट्रैंकुल होंगे जावे उतने ही स्टिल एंड साइलेंट होंगे जावे उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब ये नहीं कि कल्ले होंदे हैं. वह होंदे हैं परमात्मा दे नाल वह होंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलू टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नू डिस्टर्ब करन. उसनू तो मुश्किल बन जाती है अगर उसनू अपनी उस जोत नाल टुट के होर किसी दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशो उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुक की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

जो कोई ओदे कोल आ गया है ओदी जुत्ती नहीं गंडी ओदी टुट्टी भी गंड दिती है। परमेश्वर दा भगत सी साध संगत दुनिया कहिंदी सी पाणा गंडेरा विच कुला धर्म टोए टोर समेटा। ओदी कुल दा धर्म सी शहर दे डंगर मर जाने चुके बाहर सुट्टा होने

उन ग्रंथा निराकर गौड़ी गुआरे सतगुरु जी ने इस राग को गुरु ग्रंथ साहब के विच तीजा स्थान दिता है। ये भी बहुत वड्डा राग है गुरु ग्रंथ साहब के विच गौड़ी गुआरे अते मारू दो राग सतगुरु जी विच बहुत वड्डे बहुत बाणी विचार में किते जिला राग है विच आओ ये शाम दा राग है गौड़ी गुआरे जब हो इस शब्द नो मेरे जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल देश संदेरिया सतगुरु जी ने गौड़ी गुआरे विच

सेवा प्रवान करने दुनिया की कम्बा का जन उचार की सूरत इस वे गुरु दरबार की हाजरी भरिए आप जी अमृत ने कीर्तन रागा दे गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहब की मर्यादा अनुसार सरवण किया है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे सरबत माए भाई जितने गुरु चरणा च बैठे हो छोरी आ अरदास बेनती चौधरी करनी है सतगुरु दादा अगे हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजरिया कोई उस ना खाली ना जाए।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह, वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी, वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहिब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसनु पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ए की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, ओ साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनु पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपने घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम बुलाए। जरा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सुखगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आंदा है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल दा इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चलता, बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलता कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हां, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी? कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो फिर भी राम ना बैठे रही है। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह की ही रही। कि असि अजिहे लोग हां? गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु कित्थे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तो अपने अंदर है।

हठ मजाहूं मैं माणक लगा। कहिंदे हठ मैंने हिरदा, अपने हिरदे दे अंदरों ही एक मैं जूल कहिंदे प्राप्त कीता है, लभ्या है माणक, लभ्या है मुल ना किदा। कहिंदे ए मैं मुल नहीं खरीदया, ए मुल विकदा ही नहीं है, अपने ही अंदर है। पर सतगुरु की गाइडेंस दे नाल, असिस्टेंस दे नाल, सतगुरु की आशीर्वाद दे नाल, उसकी कृपा दे नाल, कहिंदे सतगुरु दा बन के सतगुरु ने मेरे ते कृपा करके मैनू रस्ता समझाया, ढंग समझाया, ते ए माणक, ए ज्यूल, ए ट्रेजर कहिंदे मैं अपने हिरदे दे विचों लभ लिया। कमाल है वो जीवन, तन है वो जीवन, उस जीवन नू निमस्कार। जिना जिना ने कुछ प्राप्त किया उन्होंने अपनी बाणी च दसिया। गुरु अर्जन देव जी आखदे ने पाया लाल रतन मन पाया, अपने मन दे विच ही पा लिया। पाया लाल रतन मन पाया, पाया लाल रतन मन पाया। कहिंदे मैं लाल पा लिया, रतन पा लिया। स्वामी भक्त बाणी दे विच आखदे हन, स्वामी रामानंद जी कहिंदे हन

है, कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसनु खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है,

उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही के अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजने की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन यह जिहड़ी देही है यह घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है। अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इसनु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति के इस दिया इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ तुई फिर दिया हन, ओ खिची फिर दिया हन सन। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी है, तुई फिर दी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लेके जाना है। वो उसनु रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनु अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनु उस पासे वल जान नु वरतो जिस पासे वल जान नु तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नु जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तो आड़े अपने ही अंदर है। कहते हैं इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनु पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नु विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दी आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नु वेस्ट ना करो, इसनु गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि यह तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन है। अगला नुकता, गुरु बाबा जी आखते हैं कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना, आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। यह हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हूं, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहने तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आपनू याद हो जाएगी। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। एक दफा फिर, सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। इसका अर्थ यह है, सब माया मोह शरीर हर किया, और जितने भी शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, पशुओं के शरीर, कीड़े मकौड़ियों के शरीर,
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਆਦਿ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ